प्यारे श्रोता, ये एफएम वॉइस ऑडिशन लिव साथ है और मैं हूं आपके आरजे सांगपी। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एफएम वॉइस में और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज आप सभी हमारे साथ एफएम वॉइस में बने रहेंगे। इस प्रसारण में हमें दुकान, लक और रक्त फिल्मों से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे और यहाँ पे सबसे पहला गीत रहेगा जीले श्रुति पथक और नरेश कामत की आवाज में, तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने मस्सा गीत सुना है वो है झीले, श्रुति पथक और नरेश कमात की आवाज में। आपके संदेश की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहला संदेश आई है माहमुनी रमलोद से और नी कनाउ सियाल एम एम ह्यानिन आज सांग पुई मिनगाई लवसी वो इन चुह मिन द्वातले रो रंतिया द्वात दोन सियांग क्वांग लुतुक ओ कंगाई लुतुक चे मानी का ड्यूटी मसक बेर पो खान हुनरे तक नु खान करन ड्यूटी मो कलोंगाई ने कलोंगाई चांग दो चर चर ये सेमेस्टर का वी कुंग ते तलांग वालिन दु तक जेत मै खान मी सेगमेंट दा खसान इन एंगे एसएमएसते खारन थन जर जर सी खान इन क सेगमेंट दा खसान रन लंग छदु लत लव मो मा खुनी लवलन हुन चुक वन सोइदोन सियांगे खगलो ति चर चर हे वइन सुइ रन लंगा विकुंग ते वइन चुक कनेक्ट तोरा हंगाई लतरो वइन चुक नेन दुआ तंगा लमोय तक तक ति छवगन तुमंगा हितेंद्र दास असम से संदेश आए है और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग आरजेजी फ्रॉम असम रंतिनी हम आशा करते हैं कि आज आप हमारे साथ एफएम जॉय में बने रहेंगे। तलंगवाल जेललजाम अलव लंगा हेलो आरजी संग पे नमस्ते सुप्रभात रंतिया जी आपको भी सुप्रभात वैन ड्यूटी नुआमो नेक्स्ट सॉन्ग ड्यूटी पुई नैन तान लेंगा तू ते तान पो रंती बो कने मैं मोई ते रन लंगा अनि एस एम एस सी चू गन लखेक दे उंगा नेक्स्ट सकन सिया रंगा अगला गीत की ओर बैठे है और यहाँ पे अगला गीत रहेगा जाने कब होंगे दुकान फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं। जेल अल्जाम अते व इन ये दौर लमा अते थ्लुआंग तका इन ती तुरंग अंग तीन ती थे ना दूसक ना कन लान से वा हितेंद्र दास ते माहुनी रम लोते उलुक तक इन लोग आइला कतान नेक्स्ट सेकंड प्ले लेते हैं इन ता नी से तो इस गीत का आनंद लेते हैं जाने कब होंगे।

वो था जाने कब होंगे दुकान फिल्म से लिया गया गीत था। ओ मामुनी रमलो खान दुआ लो खान लाओ बोगा जिंग कार चंगिन गहन दुआ तमो बेंग कन हन वाई लमोई तक में खान कन हन फा दवनी खा हन जाय दो रात रात तो रोहल मोई तक तक रुम ती छुआ कन तुम जे लंगा पार पारी पु लो लंगा अनि यान।

वो था ओ व्हाट अ बेब, रक्त फिल्म से लिया गया गीत है। और यहाँ पे आपके संदेश आए हैं एलजेड साइलो से अनिहन एसपी प्रेजेंट दरंतिया हलोम शिमशी में तेरो लमोई तक तक कनरन थन अंगे कनरन प्ले जेल दोना लौंगा थाजेल तुरखान कंसोम से आ 8798592021मिंग रन तार लंग छिया लवा अरम चोनि मिंग ते पो खा रन जियाक लंगला मिंग ते शत वे ते कन चा का ओ अनि हन आजे कलो ngai tha che moi deu deu khalo play yang che oran tia tereng me moi tak tak ron ti chwa zel kan ron tum don nia यहाँ पे आपके संदेश आए हैं माहनी रम लोट से अनिहन आज संग पुई पार पारी पू खान मो क्या इस वन सोमी से सोंग अदु जोग जेल जा मखा अमा पो कदु लो लाया हितेंद्र दास ने ना अनलविन ने दोन लो ती ते चुमो नहीं रंतीने दु जोग न्यो गन हन ओयां तरो एंगे सेगमेंट पत्नी कल ने दोना अरन लंग तम जोग जोग का करिंग जोग मई तुरा हन गाय ला तरो मामन lamoi tak tak ron ti chwa zel kan tu manga vi kung te te pon ron thau ve chep to in karinga he sms te ron la theng lawa ke ngai te te meng moi te jel sa me te par pari pu te midang dang chun ron lang to a ala thau chhalai thei lo nyang vi kung te hi chu ala in do re e me te ro agla git kir bai te he aur yaha pe agla git rahega din ho ya rat aur ye ki je khas kar ke jel zama meng moi te te ma hani ram lo le ton hun fm zoi lo ngai thatu zong zong te in zawai tan khani se to is git kan le te he din ho ya rat

यहाँ पे आपके संदेश आए हैं एल जेड साइलो से अनिहन आरजे सांगपुई इप्लेले तुर खा पार पारिपु हाक्ते पामा हुनिले द्वाती ततान ओ अपोंग तो मई लवीन नरंतिया बहुत बहुत शुक्रिया इतान पोखान लो निवेहाल से ओ मामुनी रमलो थियान इन आरजे सांगपुई दिचुआन कमन वर वर ताए करन राख रे ngang अपोई मामो खा खा एसएमएस लो तमनान शिम शिम ते लेकन खोर नेम तू तान खान एंगे इन एस एम एस रोन थोन ही कंतान लुए मे मनी ती खा लौशियाउल कन प्रोग्राम की लोक लिंग टू ते इन निया चुवांग चुआन इन इन एस एम एस तेल चुआन कन किम लवनी ओ नि हो ही चु अतुई ए मई पार पारिपु खाना थ्याक मई मई लवंग हव इन चु कन लथुल खुंग खा ओ अरंतिया लथुल खुंग ही कन गा तो अंगरेंग सिया एंग बेर खंगे नेक्स्ट सेगमेंट लमा खान इन ओ अरम चुआन इन एस एम एस ते रोन थोन ले ला ते रो चुआ रोन ती छुआ कन तुमंगा प्यार श्रोता समय आ गया है इस प्रसारण की आखिरी गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा हद से ज्यादा सनम रक्त फिल्म से लिया गया गीत का।

प्यारे श्रोता, ये एफएम जोई सुरेशम लफसात है और मैं हूं आपकी आरजे सांगपुई फिर वापस आप सभी के लिए। इस प्रसारण में हमें प्रीति एन पिंकी, अरविंदर सिंह और के आवाज में गीत सुनने को मिलेंगे। और इस प्रसारण की शुरुआत के लिए सबसे पहला गीत रहेगा पहला पहला प्यार, प्रीति और पिंकी द्वारा गीत के आवाज में। तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

0: आपके संदेश की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहला संदेश आई है माहुनि रमलोद से. माहुनि रमलोद से मसी रंथिंग मुसबे रतुन सेगमेंट ध्यान अंसियार हाल जोर जोर तो रंगा इला और जी सांग पुई गन लथुल खुंग सु मो वो लम्हे फिल्म मी क्या मुझे प्यार ले मैं रहू या ना रहू ते खा गई था कचा को मरंतिया एंगे सेगमेंट मसला माते रन एक्टिव छपो का एस एम एस सेगमेंट इच्छी अलाउ मासे अल्लाह थे का कनिन फल सका तेरो हितेंद्र दास असम से संदेश आए है और ये कहते हैं वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग्स आई लव आकाशवाणी स्टेशन इफ पॉसिबल प्लीज प्ले द सॉन्ग गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा. हम आशा करते हैं कि आज आप हमारे साथ FM जोई में बने रहेंगे. ठीक है हितेंद्र दास जी, तो आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा मैं रहू या ना रहू और ये कीजिए खास करके माहुनि रमलोद और हितेंद्र दास आपके लिए है.
1: कॉम्प्लिकेटेड
2: इट्स सिंपल लव
1: लव आपने भी किया था लव
2: था किया है और हमेशा करता रहूंगा.

0: मेरी स्टोरी भी कुछ तेरी स्टोरी जैसी ही थी, कॉम्प्लिकेटेड।
1: अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा आपकी दुआ। आपकी दुआ फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं और ये गीत जो खास करके वी कुंगतेया और महमूद रमलोत आप दोनों के लिए है, तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने मस्सा गीत सुना है वो है दिल से मत खेल, जो कि दिल से मत खेल फिल्म से लिया गया गीत है। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा क्या मुझे प्यार है के आवाज में, और ये गीजे खास करके अथंग तू मामनी रमलोतान खानी से। तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

वो था अरविंदर सिंह के आवाज में यारा दी मरुती। और यहाँ पे आपके संदेश आए हैं पिछोंगते चान मारी से अनि यानिन एफ एम जो ओही माई मिया लव यानिन तुक तीन हिया लवंगाय थचीन नीति कशिया फातेन एन स्कूल कल मातेन लवंगाय थचीन नीति कन शिया तुन हुना पो हियानिन अन लवंगाय थंगे तुरा कन गाया। यहाँ पे अगला गीत रहेगा राता लंबी यहाँ सिद्धार्थ और क्यारा के आवाज में, और ये गीचे खास करके पिछोंगते ले फाते चान मारी इन उलुक तक लगाई था कतान नीसे, तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने मस्सा गीत सुना है वो है सुन रहा है अंकित तिवारी की आवाज में, और यहाँ पे आपके संदेश आए है वी कुंग ते से अनिहन जेल जामिंग तीन पॉमिन तिमा से नव तय तय एम एनतीरो जेल जाम जोंग तिरो यहाँ पे आपके संदेश आए है एस पी पाल ते से अनिहन अदुता जाय ले तुरखा आर जे जोंग जोंग तानो अरंती आईभन तिलोम मैम न नेक्स्ट सेकंड प्ले लेटर ही नंग ले छानते ना वही हूं नाम तक इन लोग मन थे नान उलुक तक इन लोग इतला कतान खान कर लान ले ले चौनी हमारे पास ठीक 5 मिनट है, समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का, और यहाँ पे अगला गीत रहेगा राबता श्रेया घोषल और अरिजीत सिंह की आवाज में, और वी कुंगते पुखान उलुक तक खान लोग इतला सुन जम जेल से मोय तक तक ने कन लेट ले दो हिंदी लाते, तो इस गीत का आनंद लेते हैं श्रेया घोषल और अरिजीत सिंह की आवाज में राबता।

प्यारे श्रोता, ये एफएम जो इस ओरिशम लव साथ है और मैं हूं आपके आरजे सांपुई। फिर वापस आप सभी के लिए इस प्रसारण में हमें हिंदी फिल्म कलेक्शन डिस्को बीट्स फ्रॉम फिल्म्स से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे और यहां पे सबसे पहला गीत रहेगा डिस्को बीट्स फ्रॉम फिल्म्स से लिया गया गीत टच मी, और ये गीत आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है।

बहुत था प्यार छाया कितनी बार, जिसको बीट्स कलेक्शन से लिया गया गीत है। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा वो लम्हे वो बातें, इमरान हाशमी द्वारा गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने गीत सुना है वो है वो लम्हे वो बातें, इमरान हशमी के आवाज में। हमारे पास ठीक 10 मिनट है, तो आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा अगर तुम मिल जाओ, श्रेया घोषल के आवाज में। और ये गीत जो है आप सभी FM लिसनर्स के लिए है।

प्यारे श्रोता, ये FM जोर शोर शिमला फसाद है। समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का और मैं हूँ आपके आरजे सांगपी। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा जादू है नशा है, श्रिया घोषल और शान के आवाज में। इस गीत के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और आप सभी को शुभ दिन।

0: म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तु की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने सप्ताहांत में दक्षिणी ईरान में रडार और कमान तथा नियंत्रण स्थलों पर आत्मरक्षा के लिए हमले किए। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। वियतनाम के दानांग में आयोजित अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Hlaing held bilateral talks in New Delhi today. The talks aimed to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and

नमस्कार आप सभी लोगों को, आपके आरजे नुभई की ओर से यहाँ आज के हमारे एफएम जवाई में आप सभी लोगों को स्वागतम। और जी हाँ, इस खंड में मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:31 हुए हैं और ये खंड रहेंगे 6 बजे तक। तब तक मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, इस खंड का हमारा सबसे पहला गीत होगा दोस्ती से जिंदगी, और ये गीत मैं आप सभी लोगों के नाम करना चाहूंगी। तो आइए सुनते हैं दोस्ती से जिंदगी।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था दोस्ती से जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की ओर, क्योंकि हमारा ये जो खंड होता है ये आपके संदेशों की बिना अधूरा रहता है। तो जी हाँ, मुझे यहाँ गुड बॉय की ओर से मिला है, वो लिखता है, आज नुबई तलाइलम ची बैले तिकांगे ची अनु वी अली ही अलौ दी ती चन वे थे यंग ओ तेरो इन लो मुई री मई ती ना अमी अरुंतिया ओ कन लो मुई री मई ती ना ने चु चानिन दिन हन है अन फैमिली प्रॉब्लम खा आरोन जिया ते हुना आरोन कल्ले तुरंगा यंग ओ कई मानी पो इन लोकल हुन तुर खा चियांग फकिंग कन लसोई थे लो मा से रोन कल थुआ यंग ओ। तिचुआन इन हितेंद्र दास जी की ओर से मुझे मिला है, वो लिखता है, गुड इवनिंग आरजे जी। और जी हाँ, आपको भी हमारी ओर से गुड इवनिंग। और आप कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, आप सभी लोगों को आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा सोनू निगम और श्रीनिवास के आवाज में। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आपको कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था युवराज फिल्म से और गीत की बोल है शनो शनो। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की और फिर से और मुझे यहाँ मोया मुनपुई गंती तो आगा माँ हम मोया साइक्लो निठे न माँ से मोया ही साइक्लो आ ओम तो लवा मुनपुया ओम तो आ मुनपुई अन्यंग चुंगे मुनपुई लमदान तुर खा कति दिख लो चा मिलो से थियम दो खमिया खानि न ओम तो आ नि हियानि न आजे नु बैच बै दि ति नुआम ले हाकते पा फिटनेस बॉय मा मुनी जोनगस बॉय ते तान ले नंग माता न रंतिया फिल थिन ने मो यही मो ये साइक्लो गन ति थांग लु तो मो ये साइक्लो गन ति ले दोन थिना अंगाई ओम बोका नि हि ti chuan in vi kung te hian in arje boi nu ka message masa mi zo segment a mi a lo lu te mo a ron ti a hei lo lu che a ron lu rual thop mai na kina a mi zo segment a mi kha chu mi zo win a ron ti a to ra nga yang a kung te kha to ji ha mer pyare shrota ab hum phir aage badhenge hamare agle geet ki और हमारा अगला गीत होगा लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर के आवाज में। गीत की बोल है तेरे लिए, तो आइए सुनते हैं और इस गीत का आनंद लेते हैं।

तो जी हमें प्यारे श्रोता कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था वीर ज़ारा फिल्म से और गीत की बोल है तेरे लिए, और ये रूप कुमार राठौर और लता मंगेशकर के आवाज में है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा लकी अली के गीत, और गीत की बोल है हम बड़े हुए। तो आइए सुनते हैं लकी अली और खालिद के आवाज में हम बड़े हुए।

तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था लकी अली खलीद सौम्या राव की आवाज में, और गीत की बोल है हम बड़े हुए। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे इस खंड के आखिरी गीत की ओर, और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा उदित नारायण के आवाज में, वीर जारा फिल्म का गीत, और गीत की बोल है मैं यहाँ हूँ। इसी गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से इस खंड के लिए विदा लेती हूँ।

0: in many in Hindus' households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered.
1: Yes, absolutely. Shubham, Aditi, Shubham abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL household ko khas karke Ujwala Yojana ne benefit pahunchaya hai rural women folk ko khas karke. उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेज ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने.

0: जहां पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई, कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो?
1: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड ऐसे थे रूरल एरियाज में, ये रूरल हाउस होल्ड को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, पढ़ते थे, आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है, जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहां पानी की समस्या इतने साल बाद भी आजादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था, और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
0: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। शुभमय, सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद, पता नहीं, इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभमय, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
0: जी,
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डेफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारे हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक सरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में।

0: Unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you'll get a salary, and so that's about it. Here a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it, and then also being able to sustain it and being able to pay, repay loans. And then, because the Mudra loan, as we can see, is of three stages: Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshat Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number of percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Right, Shubham. देखिए अभी शुभम ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की. स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है. कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, तीन लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक. लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है. कुछ बताएं इसके बारे में.
2: जी, एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की, और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है जो 6000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा, इस वजह से ये 6000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं, जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहां बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पोर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में है, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
2: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of

नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं। और जी हाँ, ये हमारा आज रात का हिंदी का दूसरा खंड है। इस खंड में मैं आप लोगों को सिर्फ 15 मिनट तक गीत सुनाने जा रही हूँ। तो हम शुरुआत करेंगे जंगली फिल्म से और गीत की बोल है फकीरा घर राजा। और इसी गीत के साथ हम शुरुआत करेंगे आज रात के हमारे दूसरा खंड। तो आइए सुनते हैं जंगली फिल्म से फकीरा घर राजा आप सभी लोगों के लिए।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था जंगली फिल्म से, और गीत की बोल है कबीरा घर राजा। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की और ललदिन पुए फल कौन वेंगला यानी आजय प्ले ले तुरखा नंग मातान ले लौंगाई खवे जों जों तान ले कठियान ते जों जों तान ले आजे जों जों तान रंतिया वान फिल ट्रेन तक जों जों तान ही आना रंतिया खा खा लू ऐ बिग बिग खचु आलू लो न चेन खा उम ट्रेन मो चु वांग सा जों जों ही लू। तो ललदिन पुए फल कौन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की, और हमारा अगला गीत होगा लिंगा फेम से, और गीत की बोल है मोना गैसोलीना, और इस गीत को मैं आप सभी लोगों के नाम करती हूं।

तो जी हमें प्यार श्रोता, ये था लिंगा फेम से और गीत की बोल है मोना गैसोलिना। जी हाँ, इस खंड के लिए हमारा आखिरी गीत सुनने का समय फिर से आ गया है। और उससे पहले मैं आपके लिए ये सीजित का संदेश जो है वो पढ़ लेती हूँ। मोयमुन पुई खा कलोमले मई लामी रोनथन सकवे कबुआई बोक नैन नेट का नई लो बोक नैन वो इन चू कलू तम थे तुन सेगमेंट अमी जोंग जोंग ही इतान का लौलान लेट वे अचे ओ अरंतिया मोयमुन पुई खा अरंतिया सी जे तैयार मोयमुन पुई खा लोम थू रन सोया तिचुआन इन इतान लिया लिया रोनती नीचो। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, आप समय आ गया है इस खंड का आखिरी गीत सुनने का। और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा सोनू निगम और सुनिधि चौहान के आवाज में, जब से मेरे दिल। तो आइए सुनते हैं। और इस खंड के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी, लौट के आऊंगी 8:30 बजे। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिएगा, सुनते रहिएगा FM ZOY।

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी लोगों को आरजेएस चॉइस खंड में आपकी आरजे नुबई फिर से यहां स्वागत करती हूं। और जी हां, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये खंड है मेरे चॉइस का, यानी कि मैं अपना पसंद का गीत आप लोगों को सुनाने जा रही हूं। तो हम शुरुआत करेंगे अरिजीत सिंह के आवाज में और गीत की बोल है तू ही दिसदा। तो आइए सुनते हैं तू ही दिसदा।

मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था अरिजीत सिंह के आवाज में, और गीत की बोल है तू ही दिशता। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत जो है वो है बहुत ही खूबसूरत गीत, और ये आजकल का नया हिंदी गीत है, और गीत की बोल है फिर कभी, और इस फिल्म का अभिनेता है शाहिद कपूर और अभिनेत्री है कृति सनोन। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को भी ये गीत पसंद आएंगे जिस तरह मुझे पसंद आए हैं। तो आइए इस गीत का आनंद लेते हैं और सुनते हैं फिर कभी।

जी हाँ, मैं प्यार शर्ता, ये था फिर कभी गीत। और इस फिल्म का अभिनेता है शहीद कपूर और अभिनेत्री है कृति सनोन। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। और हमारा अगला गीत जो है वो है भागी 2 फिल्म से, और गीत की बोल है ओ साथी। तो आइए सुनते हैं ओ साथी।

अभी जो हमने गीत सुना था वो था बागी टू फिल्म का गीत, और गीत की बोल है और साथ ही बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम नजर डालेंगे आपके संदेशों पर। मुझे जयललजामा की ओर से संदेश मिला है और वो लिखता है, आर्जे नुबई नमस्कार इन खोम कन बांग तम स्नैक सॉन्ग इतान ले कथान और अंतिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन खोम बांग सुवन लोमम तक एम तेरो इन इन खोम खा अलोमम लौती न नि लइन म एस एम एस ते रन थन हुनि ने वेटन तो दोन मम चाने। हमारा नेक्स्ट गीत होगा के की आवाज में, और गीत की बोल है प्यार के पल। तो आइए सुनते हैं प्यार के पल, जयललजामा और आप सभी एफ एम श्रोताओं के लिए।

तो अच्छा मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को अभी जो हमने गीत सुना था? उस गीत की बोल है पल। के आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत है और ये गीत उस समय यानी कि बहुत ही हिट हुआ था और हमें भी बहुत पसंद था ये गीत। तो मुझे यहाँ संदेश मिला है कि और से अर्जुन उबई प्लेले ले तू रही पार पारिपू के वाल पीसी जिसका मामुनी रम लोद ले अप्ले तू इतान कलाने अरुण तीन वाहन फिल ठीन तक एम कंजवाई तान नेक सॉन्ग ही कन लानगा के वाल तान तेजे लजामा सीजे ताइल जेत साइलाउती ते वी कुंग ते अमेंग मोई ते इंदु एम पातान ते कन लानंग। तो हमारा अगला गीत होगा कबीर सिंह के फिल्म का गीत, गीत की बोल है तुझे कितना चाहने लगा।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था कबीर सिंह फिल्म से, और गीत की बोल है तुझे कितना चाहने लगा हूँ, ओए जोदो न रुआया एस एम एस थुई लुतुक मई रोन लम बोक्सिया है मुम्मा से कन हंसियर सख्त हो गए। कितने भी आप पुण्य या इबादत करो, अपने माँ बाप का दिल दुखा कर कोई काम नहीं आएगा। अपना सबसे बड़ा धन दौलत अपना माँ बाप होता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ओ मीना लिया निन्नू ले पातनी खा ए मिनो विशन ए चुमो के मानी चानिन ए खोवेला हनु ले पाते आया लुन उम लवा एंग अंगपन थी नरो पुई थोक माला इनु ले पाते जा चान लो चानिन एंग मा लोक ना उम लो ती जोंगिन अरंतिया दी सोई दिख बोकनी। आपने सही कहा कि दुनिया में हमारे माता पिता के अलावा कोई भी पुण्य काम नहीं होता। अगर हम लोग अपने माता पिता का के इज्जत नहीं करेंगे तो हमें किसी भी काम में कोई सफलता नहीं मिल सकता। और जी हाँ, अपने माता पिता से बढ़कर हमारा इस दुनिया में कोई नहीं होता। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे वी कुंते जानिन चो सिग्नल का नहीं ठा लो खो मैं रंती करिंग रन पोत दो लाओ ए मैं मिन गाय लाओ नियंग कति मैं मम लल दिन पुया फल कौन वेंग लाई है नार जय प्ले ले तुर खा नंग माता ले लो गाय थवे जोंग जोंग तान ले कठियां ते तान जोंग जोंग। और जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, समय आ गया है इस खंड का आखिरी गीत सुनने का, और हमारा आखिरी गीत होगा कुणाल गंजावाला की आवाज में भीगी होंठ। और इसी गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से इस खंड के लिए विदा लूंगी, लौट के आऊंगी आज रात 10 बजे। तब तक के लिए हमारा इंतजार कीजिएगा, सुनते रहिएगा FM जवाई।

नमस्कार मेरे प्यार प्यारे श्रोताओं, आप सभी लोगों को आपकी आरजे नुबई की ओर से फिर से स्वागतम। और ये खंड रहेंगे 10:30 तक, यानी कि मैं आप सभी लोगों को हिंदी का खूबसूरत गीत 10:30 तक सुनाने जा रही हूँ। तो हम शुरुआत करेंगे राहत फतेह अली खान के आवाज में मन की लगन। तो आइए सुनते हैं मन की लगन।

तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, ये था राहत फतेह अली खान के आवाज में, और गीत की बोल है क्या बोलते हैं, मन की लगन। तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को? मुझे बहुत पसंद है ये गीत राहत फतेह अली खान ने जो जाय थी हमी कत शिम शिम मोमा से अन्नी लसक ठिन जो अतला पिंग गजल वेल ही नितानी जो मम। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, मुझे यहाँ हितेंद्र दास जी की ओर से संदेश मिला है। वो लिखते हैं, वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग्स शो एंड गुड नाइट आरजेजी, स्वीट ड्रीम्स, आई लव आकाशवाणी। अरुंतिया अभी गुड नाइट मत बोलिए, क्योंकि अभी हमारा ये ट्रांसमिशन चल रहा है, 10:30 तक चलेंगे, आप सुनते रहिएगा। हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गीत यहाँ पर बजाएंगे। और दुर्गेश जी पोहियान रोनतिया, ये शाम मस्तानी का थी पतंग रोनतिया, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपके लिए प्ले करूंगी के गईते अहियानिन। नमस्ते आर जे नु बिलारी वे थिंग किंग मो कलंगाई सारे चेंकल अंगिन मेंग का तंग और अंतिया तेरे अंग मई मेंग का तंग कर लर रिवेटलंग कंग निया दास होमले चंद वेटलंग चुकन रिटलंग कंग दौल। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम सुनेंगे हमारे अगला गीत, और हमारा अगला गीत होगा सिम्बा फिल्म से तेरे बिन। तो आइए सुनते हैं तेरे बिन आप सभी लोगों के लिए।

तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, ये था सिम्बा फिल्म से अल्लाह मोहन दिखो पा कूल रही मैं तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना त्यामो ते चानी ना मिंग मोई ते हिया नु भई तान ले ngai छतु ते तान रन ते मिंग मोई ते रन लंग हर मामा तोप तो नन रन लंग मा से अपई लौ कन लोम थौ थविन रन लन लौ खान ए ai kan mang ang thin zong nei chu ma ti chan in ke ngai te khol shin hian i mo nu bai kalung alo a len man ve te re nen vai khuang beng i lo iron a iron play ka chu ari zai zai mai se lung len na not bo प्यार के पल खालो प्लेला आ खलुंग लेंग ले मैं इन करिंगा ते ओ ये निचिना पो का प्ले तो इंगाई छलो ती अन चियांग मई मई को पमो हिंदी सेगमेंट आई लो बो ता ये नी करिंग निचिना का प्ले दे तो मसे का जोंग ले थवंगा तुनारी जवान इन हम सुनेंगे राप्ता श्रेया घोषल और अरिजीत सिंह की आवाज में. उसके बाद हमें हम ढूंढेंगे के ये जो प्यार के पल अगर मिलेंगे तो हम आपके लिए प्ले करेंगे. तो आइए सुनते हैं राप्ता.

जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था राब उदास, श्रेया घोषल और अरिजीत सिंह की आवाज में। अब हम सुनेंगे के द्वारा गाया गया प्यार के पल आप सभी लोगों के लिए, और खास करके के लुंग ले नौ बहुवे थे नान।

तो जी हाँ मेरे प्यार श्रोता, ये था हम रहे या ना रहे कल, और ये गीत जो है इस गीत को के गई थे अन रिक्वेस्ट निया कवलोम विले कहला दू ए मई मी इलो प्ले सका दम रंग चे आर जे नु बई है ला कंग आ कंग आई था चुआन सिपाई ते निकालू मा निकालो सीए नहीं, आपके बिना दुनिया में जिंदा नहीं सकते ठीक है जाने चुके गई थे ही इंगलाउ रिया होट रिया माय। और मुझे यहाँ दुर्गेश जी की ओर से मिला है, उसने बोला है कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बजाते रहो आज के बेस्ट प्रोग्राम के लिए शुक्रिया। दिल से हम भी दिल से आपसे शुक्रिया कहना चाहेंगे। और एलार त्रिपुरा हियान प्रे मोहले मई गई था कनुआम थी न रनतिया कनवाहन लोम थी तक एम लौंगाई तो चर चर रहू आय नल ते कन लरम प्ले यंग। तो आइए सुनते हैं F4 द्वारा गाया गया अजय सिंघा की आवाज में पल पल दिल के पास।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं आज रात के लिए और इस खंड के लिए। समय आ गया है हमारा आखिरी गीत सुनने का। हमारा आखिरी गीत होगा अरिजीत सिंह के आवाज में तुम ही हो। इसी गीत के साथ आप सभी लोगों को आरजे नुबई की ओर से टाटा बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप।